0: उसी रेगेटन में बा
1: उसी रेगेटन बाले ने
2: तो मामी ये रो इसी ने मेक पार भी ना बेगर ना मोरी इसी ने तो बोधी बोल दो
0: बोधी आ अन्ना का काम तो इसी ने ना अन्ना ने इसी ने इडे के पत्तों बाई देना
3: 7.8 FM Radio Saran 107.8 FM Radio Saran Iga app nalu kuda labhya
4: Radio Saran da tulu prasara kenandullare nana dumbagu B Krishna Karanth mer pandina kelavunji tulu padakulene kenandu barka

0: बता दूं।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस चमक जाओ।